0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड में रांची से इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। आयुष मंत्रालय आज महाराष्ट्र के नागपुर में 11वां आयुर्वेद दिवस मनाएगा। इस वर्ष का विषय है बेहतर कल के लिए आयुर्वेद। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने आयुर्वेद दिवस पर सभी नागरिकों, आयुर्वेदाचार्यों और वैद्यों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री जाधव ने नागरिकों से देश की प्राचीन चिकित्सा प्रणाली अपनाने और एक स्वस्थ, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गुजरात के वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे। राष्ट्रपति वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के विश्व के नव निर्माण के लिए आध्यात्मिक जागृति अभियान के शुभारंभ के साथ वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस का उद्घाटन भी करेंगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए विकासशील और अल्प विकसित देशों के बीच अधिक सहयोग की अपील की है। डॉ जयशंकर कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक से अलग विकासशील और अल्प विकसित देशों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया में बढ़ते संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार पर दबाव और बढ़ते ऋण जोखिम की समस्याएं देखी जा रही हैं।
1: ग्लोबल साउथ के साथ भारत का जुड़ाव सिर्फ अपने राष्ट्रीय हितों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जुटता और साझा समृद्धि के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी दिखाता है। यह रिश्ता आपसी सीख और सहयोग पर आधारित है। साथ ही इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य को तय करने में ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने का साझा हित भी शामिल है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 81वीं बैठक में ईरान के विरुद्ध की गई सैन्य कार्रवाई का बचाव किया। उन्होंने सभी देशों से ईरान पर आर्थिक दबाव बनाए रखने का आग्रह किया। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के सामने समझौता करने या अमेरिका की और बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करने का विकल्प है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि बड़े शहरों में एकीकृत वाणिज्य और उद्योग कार्यालय बनाए जाएंगे। इससे व्यवसायों को विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों तक पहुंच की सुविधा एक ही स्थान पर मिल सकेगी। उन्होंने कल नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की कार्यशाला में ये बात कही। श्री गोयल ने कहा कि सरकार भौतिक और डिजिटल दोनों तरीकों से निर्यात सुगम बनाने के लिए कार्यरत है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि भारत के साथ व्यापार वार्ता प्रगति पर है। उन्होंने कहा है कि बातचीत दिसंबर में G20 शिखर सम्मेलन तक पूरी हो जाएगी। श्री कार्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कनाडा जाएंगे। G20 सम्मेलन 14 और 15 दिसंबर को अमेरिका के मायामी में होने की संभावना है। भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रचा है। भारत ने आज निशानेबाजी की पुरुष स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया। अनंतजीत सिंह नरुका, मेहराज अहमद खान और भवतेक सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। भारत के अब निशानेबाजी में 4 रजत और 3 कांस्य पदक हो गए हैं। महेश्वरी सिंह, परिणाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय तिकड़ी ने भी महिलाओं की स्की टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 37-23 से हरा दिया है। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 42-21 से मात दी थी। अब भारत का सामना कल जापान से होगा। घरेलू शेयर बाजार सूचकांक करीब 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 355 अंक बढ़कर 74,884 पर और निफ्टी 110 अंक की बढ़त के साथ 23,439 पर आ गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुभा रोहतगी। Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has said tax administrations are moving from paper-based and relationship-dependent processes to data-driven and digitally mediated systems. Addressing the inaugural session of the BRICS tax heads meeting in New Delhi today, Ms. Sitharaman said that India's experience with faceless assessment, pre-filled returns, real-time invoice authentication and AI-enabled taxpayer assistance has generated interest among the BRICS partners. The minister identified three broad areas emerging from the BRICS tax track this year, which are technology, administration and people.
3: Look at what has emerged from the BRICS tax track this year. Technology, the use of data and digital infrastructure to make tax administration more precise, more accessible and less dependent on the discretionary powers of individuals. Administration, the governance structures, the shared standards and the practical tools that give a cooperation like ours a durable institutional shape.
2: The External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, has called for greater cooperation among Global South countries to address rising geopolitical tensions, economic challenges, climate shocks and pressures on the multilateral system. The minister was addressing the meeting of Global South countries on the sidelines of the 81st UN General Assembly in New York yesterday. He said Global South countries should work together to address key challenges, including supply chain, finance, and connectivity bottlenecks.
4: We can see that in conflicts and geopolitical tensions, in the disruption of supply chains, in increasing trade barriers, fragmented investment flows, climate shocks, and the fact that international law and rules are under great pressure.
2: President Draupadi Murmu will grace the 75th annual convocation of Maharaja Sayaji Rao University at Vadodara in Gujarat today. During the ceremony, the president will confer degrees on more than 12,600 students. Later, President Murmu will inaugurate the Global Spiritual Palace Retreat Center of the Brahma Kumaris in Vadodara. The Ayushman Bharat, the Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana, has completed 8 years today. Prime Minister Narendra Modi had launched this scheme in September 2018 from Ranchi, Jharkhand, which has become the world's largest government-funded health assurance scheme. Prime Minister Modi said that the scheme has enabled record savings on medical expenses and benefiting the poor and middle class. The 11th Ayurveda Day is being observed today. The Ministry of Ayush is hosting an event at Nagpur in Maharashtra under the theme Ayurveda for a Healthier Tomorrow. The ministry said Ayurveda institutions, practitioners and stakeholders are participating in the celebrations from across India and worldwide. A deep depression over the west central and adjoining northwest Bay of Bengal is moving west-northwestwards and is lying about 150 kilometers south-southeast of Gopalpur in Odisha. It is expected to cross the coast between Visakhapatnam and Gopalpur tonight. Due to the weather system, the IMD has forecast very heavy rainfall over Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh, Odisha and Telangana today. At the Asian Games, the Indian trio of

0: situation in West Asia. A deep depression over the Bay of Bengal is approaching the North Andhra Pradesh, South Odisha coast, bringing intense weather to Odisha. Several southern and coastal districts are witnessing heavy rain, with the system expected to cross the coast tonight. More from our correspondent.
1: The India Meteorological Department has warned of very heavy to extremely heavy rainfall in parts of southern Odisha today and tomorrow. Red warnings are in force for Kalahandi, Navarangpur, Koraput and Malkangiri today, with Navarangpur also under red warning tomorrow. The system is expected to move inland through Koraput and Raigada after crossing the coast. Gusty winds of up to around 60 kilometers per hour are likely in southern Odisha. The state government has deployed 33 Odisha Disaster Rapid Action Force teams, while cyclone and flood shelter have been kept ready. Schools and Anganwadi centers have been closed in several vulnerable districts. The Kalinga Ghat in Kandhamal has been closed to traffic as a precaution against landslides and flash floods. People have been advised to avoid swollen rivers and streams and follow local administration advisories. Prakash Das for Akashwani News, Bhubaneswar.
0: The India Meteorological Department, IMD, has issued a red color alert for heavy to very heavy rainfall conditions over Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha during the day. Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya, Bihar and interior Karnataka will experience heavy rainfall today. Similar conditions will also prevail over Jharkhand, Keralam, Mahe, Konkan, Goa, Maharashtra, West Bengal and Sikkim. Meanwhile, in Delhi, there will be a mainly clear sky. The maximum and minimum temperatures in the national capital will hover around 34 degrees Celsius to 24.8 degrees Celsius. Moving on to sports, India continued its strong performance at the Asian Games in Aichi, Nagoya today, adding several medals across weightlifting, soft tennis and shooting. We have a report.
2: The Indian men's and women's ski teams bagged bronze medals today. The women's team of Raisa Dhillon, Maheshwari Chauhan and Parinaz Dhaliwal finished third with 331 points, while the men's team of Ananjit Singh Naruka, Raj Ahmed Khan and Bhavtek Singh Gill also bagged bronze with a total score of 346. Olympic medalist and three-time Commonwealth Games champion Mirabai Chanu won her maiden Asian Games medal, securing silver in the women's 49kg weightlifting category at Aichi Nagoya. She lifted 87kg in the snatch and 111kg in the clean and jerk, finishing with a total of 198kg. North Korea's Ri Songam won gold with 215kg. Chanu has now become only the second Indian weightlifter after Karnam Maleshwari to win medals across all major international competitions. Jay Meena secured India's first ever Asian Games medal in soft tennis, winning bronze after losing 2-4 to Japan's Takuya Kurosaka in the men's singles semi-final. With Shivam, this is Jigyasa Pandey for Akashwani News, Delhi.
0: President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated Parinaz Dhaliwal, Raisa Dhillon and Maheshwari Chauhan on winning the bronze medal in the women's skeet team event at the Asian Games. Prime Minister Modi also congratulated Mirabai Chanu on winning silver medal in the women's 49kg weightlifting event. The International Day of Sign Languages is being observed today. The Union Social Justice and Empowerment Minister, Dr. Virendra Kumar, said that the sign language is a powerful bridge for communication, expression and inclusion. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says youth efforts will propel India to a developed nation before 2047. Finance Minister Nirmala Sitharaman inaugurates BRICS tax heads meeting in Delhi, calls for stronger BRICS voice in global tax negotiations. Indian Railways commissions coverage 4.0 for the first time on South Central Railway. Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana marks 8 years of transforming public health care access across India. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar discusses collaboration in AI, space, energy with counterparts from UAE and France. And in Asian Games 2026, Indian men's and women's skeet teams win bronze medals in Japan. Mirabai Chanu wins silver in weightlifting. And with that, we end the midday news.
3: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस के विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव से उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला इसकी टीमों को कांस्य पदक। जय मीणा ने सॉफ्ट टेनिस का कांस्य पदक हासिल कर इतिहास रचा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि युवाओं के प्रयासों से भारत वर्ष 2047 से पहले ही विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वडोदरा में आज महाराजा सयाजी राव बड़ौदा विश्वविद्यालय के 75वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
4: वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्यों को लेकर देशवासी आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भारत जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं सभी तक पहुंचे, ऐसा भारत जहां विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग मानव कल्याण के लिए हो।
3: राष्ट्रपति ने कहा कि आज हर क्षेत्र में तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से AI की नई तकनीक, इंटरनेट और डेटा का उचित उपयोग करने का आह्वान किया।
4: टेक्नोलॉजी को अपनाने समय आपका विवेक होना चाहिए। आपको ये याद रखना चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधान दे सकता है, लेकिन सही प्रश्न पूछना आपका कर्तव्य होना चाहिए। टेक्निक आपको गति दे सकती है, लेकिन ये तय करना है, आपका काम है कि आपको किस दिशा में जाना है।
3: राष्ट्रपति ने शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की।
4: बेटी देश के लिए काम कर रहे हैं, आगे पीढ़ी को बनाने में, घर पे रह करके अपने बाल बच्चों को पढ़ाना, उनके भविष्य तैयार करना, ये भी तो देश का काम है। चाहे वर्कफोर्स में आप दिखाई दे या ना दिखाई दे, लेकिन देश को आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयासरत है।
3: राष्ट्रपति मुर्मू ने 12,600 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की और 160 विद्यार्थियों को कुल 201 स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भी उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू आज वडोदरा में ब्रह्म कुमारी संस्थान के वैश्विक आध्यात्मिक पैलेस रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन करेंगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति विश्व नवीकरण के लिए आध्यात्मिक जागरण परियोजना का शुभारंभ करेंगी। वे विकसित भारत के लिए युवा, राष्ट्र निर्माण के लिए आंतरिक शक्ति का जागरण अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी कुछ वर्षों में बहुपक्षीय कर वार्ताओं में लिए गए निर्णय एक पीढ़ी के लिए सीमा पार कराधान को आकार देंगे। नई दिल्ली में आज ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक के उद्घाटन सत्र में वित्त मंत्री ने ये बात कही। उन्होंने इन वार्ताओं को निष्पक्ष और स्थायी बनाने के लिए उनका दृष्टिकोण आवश्यक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि कर प्रशासन कागजी प्रक्रियाओं से डेटा आधारित और डिजिटल प्रणालियों की ओर बढ़ रहा है। वित्त मंत्री ने इस वर्ष ब्रिक्स कर सत्र से उभरने वाली तीन व्यापक क्षेत्रों, प्रौद्योगिकी, प्रशासन और लोगों की पहचान के बारे में जानकारी दी।
5: Look at what has emerged from the BRICS.
6: इस साल ब्रिक्स के टैक्स ट्रैक में विशेष रूप से टेक्नोलॉजी, डेटा का इस्तेमाल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा सटीक और आसान बनाया जा सके और ये लोगों के मनमाने फैसलों पर कम निर्भर रहे। प्रशासन, गवर्नेंस का ढांचा, साझा मानक और व्यावहारिक टूल्स, ये सब मिलकर सहयोग को एक मजबूत संस्थागत रूप प्रदान करते हैं।
5: A durable institutional shape.
3: श्रीमती सीतारामन ने कहा कि बैठक में दो नए कार्य समूहों, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और हस्तांतरण मूल्य निर्धारण तथा राजस्व सांख्यिकी के लिए प्रारंभिक दस्तावेजों पर विचार विमर्श किया गया। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच का चौथा चरण की शुरुआत करते हुए रेल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। रेल मंत्रालय ने बताया कि हैदराबाद मंडल के मलकानगिरी कामारेड्डी रेलखंड पर 104 किलोमीटर से अधिक मार्ग पर कवच संस्करण को अपग्रेड करते हुए चौथा चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। एक रिपोर्ट।
7: कवच भारत में विकसित की गई एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है, जिसका उद्देश्य रेल संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। यह प्रणाली लोको पायलट को ट्रेन की निर्धारित गति सीमा में चलाने में मदद करती है। यदि किसी स्थिति में लोको पायलट समय पर ब्रेक नहीं लगाता तो जरूरत पड़ने पर कवच अपने आप ब्रेक लगा सकता है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य खतरनाक परिस्थितियों में ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ट्रेनों के बीच टक्कर के जोखिम को कम करना और खराब मौसम और कम दृश्यता जैसी परिस्थितियों में ट्रेन संचालन को अधिक सुरक्षित बनाना है। दक्षिण मध्य रेलवे पर कवच 4.0 का सफलतापूर्वक संचालन शुरू होना भारतीय रेलवे की स्वदेशी सुरक्षा तकनीक को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
8: आपको हर खबर से रखे अपडेट, expert@AIRnews हिंदी और पब्लिक पर @AIRnews अलर्ट्स को फॉलो करें।
3: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के आज 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में झारखंड के रांची में इस योजना का शुभारंभ किया था। ये विश्व की सबसे बड़ी सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस योजना से चिकित्सा खर्च में रिकॉर्ड बचत हुई है और गरीब तथा मध्यम वर्ग को लाभ मिला है। श्री मोदी ने कहा कि 8 वर्ष पहले यह योजना प्रत्येक भारतीय को उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि आज 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ मिल रहा है। एक रिपोर्ट।
9: आयुष्मान भारत योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 13 करोड़ से अधिक लोगों ने मुफ्त इलाज का लाभ उठाया है, जिस पर सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। इस योजना के तहत 38,000 सरकारी और निजी अस्पतालों को जोड़ा गया है और यह योजना देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। इससे देश भर में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल रही है और गंभीर बीमारियों के इलाज की सुविधा भी मिल रही है। हाल ही में मोदी सरकार ने इस योजना का लाभ 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों के साथ साथ 37 लाख से अधिक आशा कार्यकर्ताओं और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के परिवारों तक भी बढ़ाया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब, जरूरतमंद और कमजोर वर्ग के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुर्वेद जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों की रोकथाम और संतुलित आहार, अनुशासित दिनचर्या, अच्छी नींद, योग और प्रकृति के साथ सामंजस्य के माध्यम से स्वास्थ्य बनाए रखने का एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है। नागपुर में 11वें आयुर्वेद दिवस के राष्ट्रीय समारोह में श्री जाधव ने कहा कि इस वर्ष के आयुर्वेद दिवस का विषय एक स्वस्थ भविष्य के लिए आयुर्वेद है। आयुर्वेद से जुड़ी जीवन शैली के महत्व पर बल देते हुए श्री जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल का पहला केंद्र घर है और स्वास्थ्य की पहली नींव केवल दवाओं से नहीं बल्कि एक स्वस्थ जीवन शैली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। यह यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन के दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज हम अपनी विशेष श्रृंखला में लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला रही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
10: पीएम स्वनिधि योजना से तेलंगाना में विक्रेताओं को आर्थिक विकास और वित्तीय समावेशन में मदद मिली है। ये योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, मार्च 2023 तक बढ़ाई गई इस पहल के तहत 10,000, 20,000 और 50,000 रुपए की तय किश्तों में बिना गारंटी के ऋण दिए जाते हैं। शहरी स्थानीय निकायों और राज्य स्तरीय बैंकर समिति के माध्यम से स्थानीय स्तर पर लागू की गई इस योजना में तेलंगाना लगातार देश में बेहतर प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल रहा है। राज्य में लगभग 4,47,000 विक्रेताओं तक 1,240 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पहुंची है। खास बात यह है कि स्थानीय लाभार्थियों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 65% है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की प्रशंसा की है, क्योंकि इसने विक्रेताओं के परिवारों की आय में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है और लाखों लोगों को औपचारिक बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा है।
11: पीएम स्वनिधि ने देश के लाखों स्ट्रीट वेंडर्स को फॉर्मल सिस्टम से जोड़ा और अब इन साथियों के पास भी स्वनिधि क्रेडिट कार्ड है, यानी इनके पास एक फॉर्मल क्रेडिट एक्सेस का टूल है। और स्टडीज बताती है कि स्वनिधि के इन बेनिफिशियरीज की एवरेज एनुअल इनकम 20% से ज्यादा बढ़ी है। यही नहीं, इससे इन परिवारों की हाउसिंग, न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर एक्सेस और बच्चों की एजुकेशन, इनमें भी बहुत सुधार हुआ है।
10: करीमनगर के सब्जी विक्रेता रमेश ने पीएम स्वनिधि के तहत मिलने वाले लोन का इस्तेमाल करके अपने छोटे से कारोबार को बढ़ाया और अब वे रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखते हैं।
12: माय नेम इज रमेश।
13: मेरा नाम रमेश है। पिछले 3 सालों से मैं करीमनगर में सब्जी का कारोबार कर रहा हूँ। पीएम स्वनिधि योजना की मदद से मुझे 10,000 रुपए का पहला लोन मिला। मैंने इसे 12 महीनों के अंदर सफलतापूर्वक चुका दिया। इसके बाद 20,000 रुपए का दूसरा लोन मंजूर हुआ, मैंने उसे भी 22 महीनों में चुका दिया। अभी 50,000 रुपए का लोन चल रहा है। मैं हर महीने बैंक की किस्तें समय पर चुका रहा हूँ। जिस कारोबार को मैंने 10,000 रुपए से शुरू किया था वो अब इतना बढ़ गया है कि मैं रोजाना 1,00,000 रुपए का स्टॉक रखता हूँ।
12: स्टॉक वर्थ 1,00,000 रुपए।
10: लचीले और बिना ब्याज वाली पूंजी के लिए UPI लिंक्ड रुपे स्वनिधि क्रेडिट कार्ड शुरू करने के साथ ये कार्यक्रम अनौपचारिक कर्ज के चक्र को खत्म कर वित्तीय सम्मान और सतत विकास को बढ़ावा दे रहा है। हैदराबाद से श्रीनिवास एम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
14: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
3: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान और फ्रांस के विदेश मंत्री जियां नोएल बेरोट ने न्यूयॉर्क में त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान इस बैठक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य विज्ञान, ऊर्जा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा की गई। तीनों नेताओं ने संस्कृति और विरासत सहित आपसी हित के क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे निम्न दबाव के कारण उड़ीसा में मौसम खराब है। यही स्थिति उत्तर आंध्र प्रदेश, दक्षिण उड़ीसा तट की ओर बन रही है। इसके चलते राज्य के दक्षिणी और तटीय जिलों में तेज बारिश हो रही है।
15: राज्य सरकार ने उड़ीसा डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 33 टीमें तैनात की है और चक्रवात और बाढ़ आश्रय स्थलों को तैयार रखा गया है। कई संवेदनशील जिलों में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए एहतियात के तौर पर कंधमाल में कलिंगा घाट को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि वो उफान पर चल रही नदियों और नालों से दूर रहे और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
3: भारत की मीराबाई चानू ने एशियाई खेलों की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। भारत के जय मीणा ने आज सॉफ्ट टेनिस के पुरुष सिंगल्स का कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा। भारत ने एशियाई खेलों में निशानेबाजी की स्कीट स्पर्धा के महिला और पुरुष वर्ग के कांस्य पदक भी जीते। अनंतजीत सिंह नरुका, मेराज अहमद खान और भवदेव सिंह गिल की टीम ने 346 अंक प्राप्त कर तीसरा स्थान हासिल किया। महिला वर्ग में महेश्वरी सिंह, परिनाज धालीवाल और रायजा ढिल्लों की भारतीय टिकड़ी ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने महिला कबड्डी में आज दूसरे ग्रुप मैच में ईरान को 23 के मुकाबले 37 अंक से हराया। इससे पहले भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 21 के मुकाबले 42 अंक से मात दी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने एशियाई खेलों में महिला इसकी टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने पर परिनाज धारीवाल, रायजा ढिल्लो और महेश्वरी चौहान को बधाई दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, युवाओं के प्रयासों से भारत 2047 से पहले विकसित राष्ट्र बन जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ब्रिक्स कर प्रमुखों की बैठक का उद्घाटन किया। वैश्विक करदाताओं से ब्रिक्स की मजबूत भूमिका का आह्वान। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे पर पहली बार कवच के चौथे चरण की शुरुआत की। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में 8 वर्ष पूरे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की विदेश मंत्रियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा की। और जापान एशियाई खेलों में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: with their tremendous performances. Hello and welcome to the Asian Games Aichi Nagoya 2026 report on Akashvani. My name is Abhinav Punchi and I'll be taking you through all the action from the Asian Games today. And here are the headlines. It was another exciting day as our nation won 5 medals. Mirabai Chanu starring with the silver, ending her Asiad medal drought. While 4 bronzes came from Jayameena in soft tennis, the men's badminton team, the women's skeet shooting team and the men's skeet shooting team. There was disappointment though as the star-studded 10-meter women's air pistol contingent ended medalless. However, Wushu athlete Roshabina Devi meanwhile is on the cusp of history as she looks to convert her 2023 Asiad silver to gold tomorrow after winning her semi-final today. In Kabaddi, there were wins for both the men's and women's teams. While the Indian women's hockey team continued their goal-scoring spree by thrashing Thailand. The best moment for India came from the weightlifting arena. So let's hear what Vijeta Chaturvedi had to say.
1: भारत की स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। मीराबाई चानू ने कुल 198 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने स्नैच में 87 किलोग्राम, क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल स्कोर 198 किलोग्राम रहा। गोल्ड मेडल नॉर्थ कोरिया की री सोंग गुम ने जीता। उन्होंने कुल 215 किलोग्राम वजन उठाया, स्नैच में 94 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 121 किलोग्राम। लेकिन भारत के नजरिए से मीराबाई का ये सिल्वर मेडल बेहद महत्वपूर्ण है। ये उनका एशियन गेम्स में पहला मेडल है। इससे पहले हंगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में मीराबाई चौथे स्थान पर रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने पोडियम पर जगह बनाकर एशियन गेम्स में अपने मेडल के सूखे को खत्म कर दिया। मीराबाई के सिल्वर मेडल ने भारतीय वेटलिफ्टिंग के 28 साल के इंतजार को भी खत्म कर दिया। भारत ने आखिरी बार 1998 में बैंकॉक एशियन गेम्स में कर्णम मल्लेश्वरी के जरिए वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता था। मीराबाई चानू के साथ भारत की वेट लिफ्टिंग टीम में भारत की भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव का महिलाओं के 53 किलोग्राम स्नैच राउंड में पहले प्रयास में 84 किलो और दूसरे प्रयास में 87 किलोग्राम का वजन उठाया था, लेकिन तीसरे और आखिरी प्रयास में वो विफल रही। वो 90 किलो का वजन नहीं उठा सकी, यानी कि स्नैच राउंड में 87 किलो उनका बेस्ट प्रदर्शन रहा। क्लीन एंड जर्क में 108 किलोग्राम का वजन उठाया। उन्होंने कुल 195 किलोग्राम का संयुक्त भार उठाकर अपने अभियान को 8वें स्थान पर समाप्त कर दिया।
0: We also had great news from Wushu and Sakshi Manwal has a report.
2: Roshabina Devi secured her place in the women's 60kg final after beating Indonesia's Tania 2-0 in the semi-final. The Indian Wushu star will now compete for the gold medal in tomorrow's final on 23rd September. With this victory, India now stands assured of a medal from the world of Wushu in the ongoing Asian Games 2026.
0: There was history made for India in soft tennis, and here's a report of how the action unfolded. Jayameena won the bronze medal in men's singles at the 2026 Asian Games in Aichi Nagoya, becoming the first Indian to win an Asian Games medal in soft tennis. Meena's historic run ended in the semi-finals, where he lost to Japan's Takuya Kurosaka 3-5, 1-4, 1-4, 4-1, 6-4, 1-4. The Indian had earlier beaten the Philippines' Sherwin Nagut in a thrilling 7-game quarter-final to assure India of its first medal in the sport at the Asian Games. The bronze adds to Meena's steady rise on the international soft tennis circuit. Let's now hear from the Indian athlete who created history in Japan. He's speaking exclusively on Akashvani.
3: बिल्कुल भरोसा था और सबसे बड़ी चीज कि हम स्टार्टिंग में क्वार्टर फाइनल्स भी हारे, हम मिक्स डबल्स में भी प्री क्वार्टर फाइनल्स हारे, तो उसके बाद यहाँ पर मेडल निकालना ये बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए, क्योंकि जब मेंस इवेंट में हम जीता जीता मैच हारे थे तो रात रात नींद नहीं आ रही थी और मेंटली बहुत प्रेशराइज भी हो रहे थे, और उसके बाद मिक्स डबल्स इवेंट्स में भी हम जीता हुआ मैच हार गए तो और डिसअपॉइंट हुआ मैं खुद से बहुत। मैं ही जान पा रहा हूँ कि वो कितना मुश्किल था मेरी टीम के लिए, मेरे कोच के लिए, मेरे घर वालों, स्पेशली इंडिया के लिए, इंडिया के सॉफ्ट टेनिस के जो बच्चे थे, जो करोड़ों भारतीयों की उम्मीद है उस पर खड़ा उतरना सर, ये मेरे लिए ओलंपिक मेडल से बराबर है। आकाशवाणी से जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, इट वॉज अ मोटिवेशन, मौका दिया था मेरे सपने और मेरी इच्छा जाहिर करने का दुनिया के सामने। तो सुदेश सर और हमारा सपना था सर, आज हम यहाँ पर खड़े हैं, तो वाकई में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाशवाणी का, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया।

0: Time now to head to the shooting range where Shahid Azmi has a report from a mixed day for the Indian contingent.
1: Shooting range se Bharat ke liye double bronze ki khabar samne aayi hai. Skeet team event mein Bharatiya nishanebazon ne shandar pradarshan karte hue mahila aur purush dono team spardhaon mein kaansya patak apne naam kiye. Sabse pehle baat mahila skeet team ki. Raiza Dhillon, Parinaas Dhaliwal aur Maheshwari Chauhan ki tikdi ne shandar nishanebazi karte hue 331 ank hasil kiya aur Bharat ki jholi mein kaansya patak dal diya aur iske baad purush skeet team ne bhi kamal kar diya. Olympian Ananjit Singh Naruka, Mehraj Ahmed खान और भौतिक सिंह ने कुल मिलाकर 346 अंक हासिल किए और भारत को एक और कांस्य पदक दिलाया. वहीं महिला स्कीट के व्यक्तिगत फाइनल में राइजा ढिल्लोन भी चौथे स्थान पर रही, जबकि शूटिंग के एक बड़े मुकाबले में मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में 181.1 अंकों के साथ पांचवें स्थान पर रही. यानी शूटिंग रेंज पर भारत ने आज दो कांस्य पदक जरूर जीते, लेकिन राइजा ढिल्लोन, अनंतजीत सिंह नरूका और मनु भाकर के व्यक्तिगत मुकाबलों में पदक से चूकने का मलाल भी रहा. निराशा ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के प्रदर्शन से भी हुई. महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल इवेंट के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई. आपको बता दें, ईशा सिंह ने 572 और सुरुचि ने 568 अंक हासिल किए. भारत को शूटिंग से अब तक कुल 7 मेडल मिले हैं, जिनमें 4 सिल्वर 3 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं. हालांकि गोल्ड से अभी भी दामन खाली है. आपको ये भी बता दें, पिछले एशियन गेम्स में भारत ने 7 गोल्ड सहित कुल 22 पदक जीते थे.
0: The Indian women's team was in action in hockey, and well, it was another one-sided encounter. India continued its unrelenting form in the women's hockey competition at the ongoing Asian Games after blanking Thailand 21 in a Pool B fixture. This win joins the list of India's thumping 19-0 and 17-1 victories over Uzbekistan and Indonesia respectively. Forward Deepika starred with 9 goals, while Namneet Kaur scored 4, Rutuja Pistol bagged a hat-trick. India won bronze in Hangzhou 2023 and is in a hunt for their first Asian Games gold since 1982. Time now to check out what happened in the boxing arena. शाहिद आजमी.
1: भारत के अंकुश पंघाल आज मुक्केबाजी स्पर्धा में सर्वसम्मति से हुए फैसले में जीत के साथ पुरुषों के 80 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं. पहली बार एशियाई खेलों में उतरे 21 वर्षीय राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता पंघाल ने बहरीन के हमसा ओगेल को प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 5-0 से हराया. पिछले साल विश्व मुक्केबाजी कप में रजत पदक जीतने वाले अंकुश अब पदक पक्का करने से एक कदम दूर हैं. वो क्वार्टर फाइनल में ताजिकिस्तान के नेहरूज सालिमेव से खेलेंगे.
0: Time now for all the action from the Indian contingent from table tennis. Sakshi Manwal has a report.
2: Harmeet Desai and Yashaswini Ghorpade booked their place in the mixed doubles quarterfinals with a 3-1 victory over Hong Kong's Yu Huan Tho and Wing Lam. The Indian pair won 11-6, 11-5, 10-12, 11-7 to advance to the last 8. Manu Shah and Dia Chitale stormed into the mixed doubles quarterfinals with a dominant straight games victory over the Maldives' Ahmed Musa and Nazim Eshat. The Indian pair won 11-0, 11-7, 11-6 in just 15 minutes, wrapping up a commanding performance to book their place in the last 8. Harmeet and Yashaswini will face Lin Shidong and Huai Man of China, while Dia and Manish will face Wong Chun and Du Hui of Chinese Taipei.
0: The Indian contingent has been giving their best in fencing. Vijeta Chaturvedi has more.
3: फेंसिंग मतलब तलवारबाजी का खेल. इंडिविजुअल सेबर में गीशो निधि कुमार सेन पद्मा ने राउंड ऑफ 32 में शानदार प्रदर्शन करते हुए लाओस के क्वेंटिन सेसाना को 15-8 से हराया और प्री क्वार्टर यानी कि राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई. राउंड ऑफ 16 में उनका मुकाबला कजाकिस्तान के आर्ट्योम से हुआ. यहां भारतीय फेंसर ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन मुकाबला 11-15 से हार गए. इस परिणाम के साथ कुमार सेन पद्मा का इंडिविजुअल सेबर अभियान समाप्त हो गया. वहीं बात करें महिलाओं के व्यक्तिगत फॉइल स्पर्धा की, तो मीना देवी नौरेम और आशिता स्टेलिन राज जॉयस राउंड ऑफ 32 से बाहर हो गयी.
0: द इंडियन मेन बैडमिंटन टीम वर ट्राइंग टू क्रिएट हिस्ट्री टुडे. Let's hear what Sakshi Manwal has in her report.
2: India lost 1-3 to China in the men's team semi-final at the Asian Games and settled for the bronze medal. Shi Yukui defeated Lakshya Sen in straight games, winning 21-16, 21-18 in the opening match of the men's badminton team semi-final. Later, Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty made a strong start against China's Liang Weiqing and Wang Chang, defeating

0: beating them in straight games 2-0, 21-11, 22-20. They helped India level the score with China at 1-1. However, Li Shifeng beat Ayush Shetty 21-19, 21-13 in straight games to put China 2-1 ahead of India. Arjun and Hariharan went down 21-16, 17-21, 21-9 in the fourth match of the semi-final tie. The Indian pair showed some resistance in the second game, but the Chinese duo quickly stopped the fight back. India's bronze is only its second ever Asian Games medal in the men's team badminton event.
1: India war in action in the Kabaddi competition. Vijeta Chaturvedi has more.
2: Bharatiya Mahila team ka mukabla Iran se hua aur Bharatiya team ne ye match 37-23 ke antar se apne naam kar liya. Mukable ke pehle half mein Bharat 19-15 se aage tha. Dusre half mein Bharatiya khiladiyon ne defending aur raiding dono mein behtar talmel dikhaya aur badhat ko lagatar mazboot kiya. Is jeet ke saath Bharatiya Mahila team ne group stage mein lagatar dusri jeet darj ki. Ab baat karte hain भारतीय पुरुष कबड्डी टीम की. पुरुष टीम का सामना बांग्लादेश से हुआ और भारत ने यहां भी बड़ी जीत दर्ज की. भारत ने बांग्लादेश को 48-25 से हराया. पहले हाफ में ही भारत ने 29-9 की मजबूत बढ़त बना ली थी. इस जीत के साथ भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज में अपनी लगातार तीसरी जीत दर्ज की. बांग्लादेश पर जीत के बाद भारत ने ग्रुप ए से सेमीफाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है. अब भारतीय पुरुष टीम का ग्रुप स्टेज में आखिरी मुकाबला 24 सितंबर को चीनी ताइपे के खिलाफ होगा. वहीं महिला टीम भी 24 सितंबर को जापान से भिड़ेगी. इसके बाद 25 सितंबर को सेमीफाइनल मुकाबले होंगे. एशियन गेम्स 2026 में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मेडल तो पक्का हो गया है.
1: India were trying to make an impact in swimming after a disappointing day yesterday. Sakshi Mandwal has a report.
0: Sajan Prakash missed the swimming men's 100-meter butterfly heats. Meanwhile, his compatriot Benedictine Beniston had finished fourth in the heats with a timing of 53.08 seconds. Anish Sunil and Vedant Madhavan finished fourth and sixth respectively in their men's 200-meter freestyle heats. Anish clocked 1 minute 22.65 seconds ahead of Madhavan's 1 minute 23.67 seconds.
1: There were a lot of hopes from the Indian equestrian contingent. Vijeta Chaturvedi has more.
2: भारतीय घुड़सवारों ने इवेंटिंग के क्रॉस कंट्री चरण में हिस्सा लिया. भारत की ओर से फवाद मिर्जा, अर्जुन सिंह नागरा और आशीष लिमई मैदान में उतरे. इसमें ड्रेसेज, क्रॉस कंट्री और शो जंपिंग जैसे चरण शामिल होते हैं. यानी सिर्फ घोड़े की रफ्तार ही नहीं बल्कि नियंत्रण, सटीकता और बाधाओं को पार करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है. हालांकि भारतीय दल का प्रदर्शन आशा अनुरूप नहीं रहा, इसलिए भारत का क्रॉस कंट्री इवेंट में अभियान आज समाप्त हो गया.
1: A lot of the Indian contingent were in action in the squash competition. Well, Sakshi Mandwal will tell us how they fared.
0: Indian squash players Abhay Singh, Veer Chotrani and Tanvi Khanna all advanced to the round of 16 in their respective singles events on the opening day of squash at the 20th Asian Games, Echi Nagoya 2026. Tanvi Khanna made quick work of South Korea's Kim Dami, cruising to a 3-0 victory in just 16 minutes. The Indian won 11-5, 11-7, 11-5 to book a place in the round of 16. Abhay Singh defeated Thailand's Arkaradit 11-1, 11-0, 11-2, cruising to a 3-0 easy victory for himself. Veer Chotrani defeated Sri Lanka's Shamil Vakil 11-8, 11-3, 11-3, then also securing a place for himself in the round of 16 men's singles in squash.
1: There was a lot at stake for the Indian contingent in rowing. Shahid Azmi tells us how it unfolded.
3: रोइंग से भारत के लिए अच्छी खबर है. एशियन गेम्स में भारतीय रोवर्स ने चार स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बना ली है. पुरुषों के सिंगल स्कल्स में बलराज पवार ने 6 मिनट 52.84 सेकंड के समय के साथ हीट में तीसरा स्थान हासिल किया. वहीं पुरुषों के डबल स्कल्स में सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी 6 मिनट 15.63 सेकंड के समय के साथ दूसरे स्थान पर रही और फाइनल ए में पहुंची. लाइटवेट डबल स्कल्स में रोहित और उज्जवल कुमार सिंह ने चौथा स्थान हासिल करते हुए फाइनल में जगह बनाई. क्वाड्रपल स्कल्स में अरविंद सिंह, कुलविंदर सिंह, नवदीप सिंह और जकार खान की टीम ने फाइनल में जगह बनाई. अब भारतीय रोवर्स की नजरें पदक पर हैं. डबल स्कल्स का फाइनल कल सुबह खेला जाएगा.
1: फॉर इंडिया टू स्टे इन कैनो कॉम्पिटिशन दे हैड टू डू वेल टुडे. साक्षी मानवाल टेल्स अस हाउ द इंडियन कंटिंजेंट फेयर्ड.